सोल कपड़ा सब भाई पारे को रेकर्ड कर वर्ष को वर्षा ने 35 वर्ष अगि को तोड़े मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने बताया। प्रधानमंत्री चिंता सरकार ने विपत्ति

इक्कीस उनका सपना और 2083-84 में लगे 56,04,20,700 का बजट पारित होने का उल्लेख करिए। किसी गरीब द्वितीय पन्ना में छापिए को अल्प

तथा पाचन कार्य पल्ल का अवस्था सुधार विषय पर अवस्था हो आवेदन को उद्यमशीलता का आवश्यकता प्रकृति शिक्षा सामाजिक उद्यमी महिला संस्था महिला कल्याण होने अलग सेवा संग्रह काम करते रहता स्थानीय सरकार का सहकार मार्फत क्षेत्रीय प्रबंधन कार्यक्रम संचालन के क्रम काम कर आर्थिक रूप में सक्षम बनेगा प्रयास अलग प्रकृति सरकारी संस्था का अध्यक्ष इंदिरा प्रसाद।

सरकारी मदद पालिका ने बहुमुखी कृषि हुनर व्यवसाय कमल रूपांतरण कार्यक्रम कृषि में चिन्हित प्रथम कार्यक्रम संचालन को यह कार्यक्रम बजाक नगर पालिका का 3,50,000 संस्था का 3,50,000 कुल 7,00,000 किलोमीटर साझेदारी में कार्यक्रम संचालन पशु सेवा शाखा बांसवाड़ी में अधिकृत घनश्याम तिवारी।

0: 40% पर्ने पछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौँ।
1: चिसो पदार्थ माछा मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फल फुल खाऊ।
0: मध्यपान र धुम्रपान सेवन नगरौँ।
1: स्वस्थ रहौँ, सुखमय जीवन बिताउँ।
2: रेडियो पूर्वाधार एफएम द्वारा सन्देश।

विश्वास के सेवक प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता घटी, वैमिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वत रूप में दिखाई यहां कन स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पर्दा करे कौशल्य अस्पताल पास में संपर्क

खाई व्यायाम शब्द करी धूम्रपान मदिरा मसेटू न रही तनाभन नियंत्रण करी आज निर्णय काली जीवन अंतराल निशाना रोग से बाकी स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो गुरुबाबा एफएम का सहकार्य स्वास्थ्य कार्य प्रत्याशी चलित मजारी सदी।

সর্ব দর্শন অনুসন্ধান কেন্দ্রের সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল এবং রোটারি সাথে বিশ্ব ভারতীয় রোটারি ফ্রেন্ডস এবং পার্টনার ক্লাবগুলি দ্বারা জনহিত রাজ্যে প্রস্তুত সন্দেশ श्रेष्ठ एग्रोभेदमा विभिन्न जातका धानका बिउहरू हाइब्रिडमा एमपी 30-30 64-44 युएस 312 आइएमआरएस 57-86 उन्नत जातको धानको बिउमा राधा धान सावित्री सजु 52 शर्मा मन्सुली राम धान 606 505 301 क्यामनी जस्ता असिनो धानको बिउ पनि श्रेष्ठ एग्रोभेदमा आइसकेको छ। साथै रासायनिक मलमा युरिया डिएपी पोटास र विभिन्न खालका तरकारीका बिउ बिजन विस्तारी पशुपक्षीको औषधि उपचार सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। स्थान श्रेष्ठ एग्रोभेट खास गरी किसान चोकदेखि दक्षिण सामुदायिक पुस्तकालयको पूर्व साइडमा

0: प्रतिमा आयरन कैल्शियम आयरन स्टाइल स्वस्थ गाय सुरक्षित परिवार
1: रेडियो गुरुबाबा को सहकारी स्वास्थ्य

0: からさっきなったのが、それに関するまあ、お世話様の方、あげればできる。
1: ये पुलिस समस्या वालों को बात करना है अब ये और क्या करना है पुलिस की समस्या नहीं पड़ता कई लोग तो बस समय की बात है इस सब पर सब इतना बने कि प्राइवेट का तो कोई लाइन ना देखे ये नहीं है ना तो हम ये भी नहीं आई लगे रहते हैं और ये ना मिक्सिंग वगैरह अब क्या था तो इस समस्या के साथ मोबाइल वाले देखने को हम सब दिख रहा है देखने को हम सब तो अब सामान्य तो इस समस्या गर्मी में मेरे को वाला संभवतः गर्मी ले नहीं मिलता समस्या हो भाई इसलिए कैसे समस्या दिख रही है लगभग 2 ग्राम जति खाली सोडा तपाईँले हुन्न ठुलो गाई भइसक्यो लगभग 4-5 किलोको गाईले टोटल एउटा गाईलाई चाहिँ 1 किलो 200 ग्राम जति चाहिँ सोडा खुवाउनु भने यो ग्यास्ट्राइटिस भएर पेट फुलिएको हुन्छ होइन त्यसपछि यसले चाहिँ समाधान गर्छ एउटा कुरा सोडाले अर्को कुरा हाल्दाखेरि चाहिँ यो गुण हुन्छ नि गुणमा पनि मिनरलहरू अथवा यो इनर्जी दिने चिजहरूको चाहिँ भरिपूर्ण हुन्छ ताकत दिने चिज खनिज पदार्थ भरिपूर्ण हुन्छ गुणमा गुण पनि लगभग हजुरले 250 ग्राम

0: друзья, с вами Тхом Пазик Маршан Дейстоп на Хорс Фаббет Нас, вот как я пинту сам дома.
1: Bhagavad
0: आगो सब सही तीन जहन पकड़ा धनबाद जिला प्रभारी कार्य बर्दिया से खर्चा प्रभारी थोड़ी विशेष ऑपरेशन का क्रम लोहिया नगर पालिका स्थित एक प्रोग्राम से अभिनंदन सिंह पटाख बरामद कर रखो उनकी सूचना का आधार में कई किलो खंडनाशी का क्रम में प्रभारी जिला नगर द्वारा फिट का आधार प्लास्टिक का डिपो क्या भिटर से जमा एक किलो 960 ग्राम शुद्ध पेट्रोल एक किलो 926 ग्राम लागू औषध बरामद अदालत प्रहरी चलाई लगा घटना में संलग्न अदालत आरोप में जाकर कोर्ट बार कोर्ट गांव पालिका छात्र 46 वर्षीय खन बहादुर रावत ठाकुर का 42 वर्षीय रोकेन्द्र बहादुर रोकाएगो पार गंगा देवी गांव पालिका छात्र 48 वर्षीय केशव सिंह केसी खुला नियंत्रण में रहा प्रहरी घटना में प्रयोग कैदीला B9 62 96 नंबर का मोटरसाइकिल चार थन मोबाइल भाड़ के रूपया 8300 समेत बरामद कर चले रहा पकड़ाउ प्रकार का आवश्यक कानून प्रक्रिया का फरी रहा कल से घटना बारे थप अनुसंधान जारी रहा प्रहरी चले रहा यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगंज से प्रभारी दुई चिकित्सक सहित पांच जन पकड़ाउ कर बाद जिला प्रभारी कार्यालय का प्रभारी नायक परिचय प्रदीप सिंह राठौर सवारी चालक अनुमति पत्र लेना तथा सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण करा आवश्यक पड़ना आधिकारिक व्यक्ति से मेडिकल जांच देखा चिकित्सकीय मेडिकल रिपोर्ट देना पाना विषय देखा योग्यता का प्रमाण पत्र वितरण ग्राहकों से मनोकन पकड़ाओ के गिरफ्त जानकारी करवाकर वहां अनुसंधान जारी खड़गपुर से पकड़ा पूर्व चिकित्सक सहित बिजोलिया का नाव को पेटक प्रति नाव का नियम उल्लंघन कर बताया प्रभारी विषय देखा उन्हें योग्यता का प्रमाण पत्र वितरण

0: karma kaydiyat etkere kursi muhakkan yentir marida samadhi bar. Basuri nagar palika korpul pachim mandal razma vichita se uttar hoib upahat masitrai ka tevostani ko kheti karapura upar pani ka korpona avastha manda नगर पालिका सिंचाई सुविधा पुराई का भूमिगत सिंचाई व्यवस्था पर जोर दे जनता बांसुरी नगर पालिका वार्ड नंबर चार में सिंचाई सुविधा पर तकसीम पहल करते हुए बात कही वरा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बास्तर खाना पूछ रहा
1: नगर पालिका वार्ड नंबर चार

संलग्न व्यक्ति तथा कर्तव्य आवश्यक अनुसंधान तथा कानूनी कार्यवाही का जनपद कार्यालय पालगंज जिला प्राधिकारी पाठ्य वन पैदावार का उपयुक्त प्रदान तथा प्रसार प्रसार नियंत्रण प्रभाग सुरक्षा निकाय निगरानी और कार्यकारी बना निरंतर प्रतिरत चलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12 पर वार्षिक परीक्षा का नतीजा सार्वजनिक प्रभाग बोर्ड के अनुसार नियमित हो 3,32,400 आंकड़े हो 85,900 परीक्षार्थी परीक्षा में सहभागी मध्य नियमित हो 2,31,770 आंशिक हो 36,420 जना परिपक्व 2,68,190 परीक्षार्थी सबको विषय मध्य प्राप्त कर वर्ष नियमित हो 3.73% 69.75 आंशिक हो 42.38% भाग समग्र 67.13% परीक्षार्थी उत्तीर्ण सरकार परीक्षा इंटर 43 दिन के दौरान नतीजा प्रकाशन का निर्देश अंतर्गत बोर्ड 40 दिन के दौरान प्रकाशन कर बोर्ड आज पहला खर्च विषय परीक्षा अनियमितता कर थर विलक 40 परीक्षार्थी उपयन कार्यवाही कर मध्य 38 जना चालू खंड का सबको विषय का परीक्षा रद्द पहली बार जो परीक्षार्थी का परीक्षा रद्द करना संग होना एक वर्षसम बोर्ड में से संचालन होना पूर्व परीक्षा में सहभागी होने पैना निर्णय के युवा परीक्षा फल बोर्ड का वेबसाइट में नेपाल टेलीकम का वेबसाइट एसएमएस आईडीआर तथा यूएसएसटी सेवा में से नतीजा चित्तनी पुस्तक के परीक्षार्थी प्रति विषय 1,000 रूपया शुल्क तीर्थ असार 6 बजे बिहार 11 बजे से असार 12 बजे संध्या 5 बजे समय पर योग रिजल्ट का लाभ ऑनलाइन आवेदन दिया सीखना जमा करेगा।

प्रधान प्रॉपर्टी जैसे उद्योग जितने किसी को अवसर मिलता है मैं कर दू हमने वो प्रॉपर्टी जैसे उद्योग गैस की